विश्वे चस्या करिया पहरा चित्ती वारी मां हुआ सूरज कुरत अनेक नानक करते के तिवेश राग पनासी महला पहला गगन में ताल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलयान लो पवन चबरू करे सगल बंदराए फुलंत ज्योति कैसी आरती

दर्शन परस्य गुरु का जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ मोहल्ला नौवां। मन रे प्रभु की शरण बेचारो।

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार चुपै चुप न होवै जे लाए रहां लिवतार भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार सहसो सियाणपन लख हो हिता इक न चलै नाल केवल सचिया राह हुई है क्यों कूड़ै टुटै पाल हुक्म मरजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बार हुक्म न कोए नानक हुक्मै जे बुझै ताहो मैं कहै न कोए गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जाणै निसण गावै को गुण बड़ियाई आचार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथिना वै तोट काथ कथ कथि कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाहि खाहे हुक्मि हुक्म चलाए राव नानक विकसै वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए भाखिया भाव अपार वाखै मंगह देह देह दात करे दातार फिरके अगे रखिए जित दिसै दरबार मुहाव के बोलन बोली है जित सुनतर हिप्यार अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार करमिया वै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानके वै जानिया सब आपे सचियार थापया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निधान गाविया सुनिया मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नाद गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई गुरी सर गुर गोर वर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक दे बुझाही सब नानिया का एक दाता सो में विसर न जाई तीर्थ नहवा जे तुस भावा बिन पाणी के नाए करी जे तीसर ठो पाई वेखा बिन करमा के मिलाए लई मत विचर तंजवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाए जे दूचार यार जा होर दसूनी हुए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोई चंगा ना रखाए कह जस कीर्त जग ले जे तिस नजर न आया वही तो वात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रहे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे ते हा कोई ना सुझई जे तिस गुण कोई करे सुनया सत पीर सुरनाथ सुनया धर तबलो आकाश सुनया दीप लो पाताल सुने पोहि ना सकै काल नानक भगतान सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया ईश्वर बरमैन सुनया मुख सलाहण मन सुनया जोग जुग तन भेद सुनया शास्त्र सिमृत वेद नान भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अड़सठ का इस नाम सुनया पड़ पड़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नान भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गास सुनया सेख पीर पातशाह सुनया दे पावै राव सुनया हाथ होवै सुगाव नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कह बिचै पछताए

अभूत है, अशूत है, आलोक है, अशोक है, कर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबह है, अगह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग पर्यात छंद। नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नृसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनाम्य समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ति वैभूते कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वर परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वर परम वृद्धि, नमो शस्त्र पाणि, नमो अस्त्र माणि, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता अपेक्षीय परमी अभोगी अभोक्ते, नमो जोग जोगेश्वर परम जोगते, नमो नित्य नारायण क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हरता, नमो राग रूपे, नमो साजा, नमो पुपे, नमो दान दाने, नमो मन माने, नमो रोग रोगे, नमो अस्तंग स्नान, नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्र, नमो इष्टेष्टे, नमो तंत्र तंत्र, सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अधूर दर्दं अगंग ओग हरता परम परम परमेश्वर प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अशेदी अभेदी अनाम अकाम समस्तो पराजी समस्त अस्ता मंगतिराजो चाचरी शंदले है थले अपीत है अपे है प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है भुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने, नमस्त्वं नृनाथे, नमस्त्वं परमाथे, नमस्त्वं गंजे, नमस्त्वं अपंजे, नमस्त्वं अकाले, नमस्त्वं अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्पेशे, नमो राजराजे, नमो साहसाजे, नमो साहसाहे, नमो महामाहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोक रोके, नमो शोक शोके, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतं, नमो सर्वपीतं, नमो सर्वज्ञानं, नमो परमतां, नमो सर्वमंत्रं, नमो सर्वजंत्रं, नमो सर्वदृश्यं, नमो सर्वकृष्णं, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट छन्त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अखल जोगे अचल भोगे चल राजे अटल।

अजान बाहु सहन साहुराजान राजपनान बांदी बांदी उपमा महानिंद्रान इंद्र बालान बालंकान रंग कालान कालन पूतियांग आपा पंगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपेन काम मत दुत प्रचंड मित गत अखंड आवेश्य कर्म दृश्य कर्म

पवित्र प्रतिशय अदिशय अदृशय अकृशय भगवती संतव प्रसाद कहते कि आ छिज दिस है कि आ भिज पिस है कि आगन कर्म है कि आ भन परम है कि आ भिज लोक है कि आदित सुख है कि अवधूत भरने के विभूत करने के राजन प्रभ है धर्म तुझ है कि आ सुख भरने के सर्वा परने कि जगतंकृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि सब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपवन रूप है कि आदा देव है कि आप अपेव है कि चित्रंग विहीन है कि कह दीन है कि रोजी रे जा कर ही मेरे हक है कि पाक बेऐब है कि गैब लु गैब है कि अहबुल गुना है कि शाहान शाह है कि कारण पुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राज क्रीम है कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है के सर्वत्र मानी एक सर्वत्र दानी है कि सर्वत्र गौन है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र पा हो कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र मान है सदैव प्रदानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कली में के ब्रह्मंग ही में के आकल अलम है के साहिब कलाम में के हुस्न उल वजू है तमाम लो रुजू है हमेशा सलाम में सली खत्म उदाम में गनी मुल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बुलंद उल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमाम है रुजू उल निधान है हरीफ उल अजी मेरे जायक यकीन है अनेक उल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज उल निवास है गनी मुल के राज है रुकद स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभु।

परवाह है। सो जुगत सुदा है, सदैव स्वरूप है, आपे दीन रूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है, सदैव काम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, आद रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनाम मित्र भंगी त्रिकाम मित्र वर्ग मित्र वादे अगंजे अगाधे सुपंग सर्वभाग्य सुसर्वानुरागा त्रिभुक्त स्वरूप है, अशिज है, अशूत है, किन्नर कुंभप्रणास है, प्रथ्युल प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयोगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयोगत अनूप है, चाचरी शांत

सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंतर्म सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता सावलचन त्वय प्रसाद। नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमातं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंग अनंगी अनाम्य त्रिपंगी त्रिकाम्य निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न दत्ते न माते न जाते न पाते न साकं श्रीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रवाहे अजय है अजा है बहुती शंतु है प्रसाद। के जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमें सुलो सलाम है समस्त कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्नो चिराग है कि काम करीम है कि राज करीम है कि रोजी दिहंद है कि राज करहिंद है करीमुल कमाल है कि हुस्नुल जमाल है गरीमुल खिराज है गरीमुल निवास है हरीफुल सिकन है हैरासुल फिकन है कलंक प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय क्रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकम प्रणास है बहिस्तुल निवास है कि सर्वुल गवन है हमेशुल अरवन है तमामुल उत्तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीस है आदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है अजमीनुल जमा है अमीकुल एमा है करीम उल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचन प्रकाश है कि मैं तो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मैं तो बेभूत है कि मैं तो बसा है कि आत्म प्रवाह है कि अचलंग अनंग है कि मैं तो अपंग है मद पार छंद त्वय प्रसाद है।

रूपे। नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो त्यान त्याने, नमो युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलय कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके, नमो आश्वासे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अचरी शांत अजय अलय अभय अभय अपूह जुवनाश आकाश गंज पंज लख पख काल दयाल लेख भेख नाम काम गाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी

नमस्तुर प्रणाम्य सुमस्तुर प्रणासे अगंजलु अनाम्य सुमस्तुल निवासे निर्कामं बेपूते सुमस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं बेपूते

जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूते एकृति मनु एकृति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भू भली बेद न्यावत

ना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुस्सबै तुम काबहो आप हादै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख्य सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए सबै रन कौआ संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर न ध्यान।

रे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रच्छा। राख ले हुम हिराखन हारे साहिब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप्तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब अकर्क करत हो कब हूं, तो मैं मिलत दे तर सबू। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही तेरै निरालम, जानत भेद भेद रियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आदा नीर अनाद, समता का मूल उचारत भेदा, जा को भेव न पापत भेदा।

कृपा दृष्ट तन जाहिने हरि होता के ताप तन कमय हरि हो रिंद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्याश्व सके न कोई।

सुनै गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाउ निक न तिन नरके रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह सहस पुण जय अर्ध सहस पुन तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

ऐसा कम मूले न कीते जित अंत पछोताइए। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।

कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन नाम बसाया गुर प्रसादी हर मन वसे

मोहे दीन कौ राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया। हरे अमृत मुख नाम दिया सजना।

साहब जी रूप नरेक नरंग किच त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिसे बिझाए नानका जिस हो वैसो प्रसन्न। तू मेरो मेर पर्वत है स्वामी ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख ली नीहर मेरी। मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तै तुम रखन हारे। पावक सागर थाल हते

0: मात पिता सतमीत न पाए
1: मनोहा नाम तेरे संग सहाई
0: जय महा भयान दूत जन दल
1: जय केवल नाम संग तेरे चले
0: जय मुश्किल होवे अत पारी
1: हर को नाम खिल माहे अधारी
0: अनिक पुनः चरण कर नहीं तरे
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे
0: गुरमुख नाम जप हो मन मेरे
1: नानक पावो सुख घनेरे
0: सगल सृष्टि को राजा दुखिया
1: हर का नाम जप्त हो सुखिया
0: लाख को रोरी बंद न परे
1: हर का नाम जप्त निस्तर
0: अनेक माया रंग तिख न बजावे
1: हर का नाम जप्त गावे
0: जय मार्ग यो जात अकेला
1: तै हर नाम संग होत सेला
0: ऐसा नाम मन सदा ते आई है
1: नानक गुरमुख परम दत्त पाई है
0: छूटत नहीं कोट लख बाहे
1: नाम जपते पार पराई
0: अनेक बिघन जय आए संग हरे
1: हर का नाम तत्काल उधारे
0: अनेक जोन जन में मर जाम
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: हो मैला मल कबहु न तोवे
1: हर का नाम कोट पाप होवे
0: ऐसा नाम जप हो मन रंग
1: नानक पाइये साध के संग
0: जह मार के गण जाहे न कोसा
1: हर का नाम महा संग तोसा
0: जह पेंडे महा अंध गुवारा
1: हर का नाम संग उजियारा
0: जह पंत तेरा को ना सियानु
1: हर का नाम ते नाल पशानु
0: जह महा प्यान तपत बहु काम
1: जह हर के नाम की तुम ऊपर शाम
0: जह त्रिखा मन तुझ आकर खे
1: जह नानक हर हर अमृत वर्ख
0: भक्त जना के बर्तन नाम
1: संत जना के मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ओट
1: हर के नाम उदरे जन कोट
0: हर जस करत संत दिन रात
1: हर हर योग साध कमात
0: हर जन के हर नाम निदान
1: पार ब्रह्म जन की नो दान
0: मन तन रंग रते रंग एक
1: नानक जन के बिरदल विक
0: हर का नाम जन को मुक्त जोग

0: जन के ओट सताने
1: हर प्रताप जन अवर न जाने
0: ओत ओत जन हर रस राते
1: सुमंत समाद नाम रस माते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का भक्त पर नहीं छपे
0: हर की भक्त मुक्त बहु करे
1: नानक जन संकेते करे
0: पार जाते हर को नाम
1: काम देन हर हर गुण गाम
0: सबते उत्तम हर की कथा
1: नाम संत दर दुख लथा
0: नाम की महिमा संत
1: संत प्रताप सब
0: संत का संग बड़ भागी।

0: त्र्यंबका पौ व्यापे
1: अनेक जगत कृष्ण नात्र आपे
0: एक अनेक अगन नहीं भूय
1: कोट पाप जग नहीं सीजे
0: छूट सनाही उब प्याल
1: मोहे व्यापे माया जाल
0: अवर कर तू सगली जमडान
1: मोहे
0: हर का नाम जप्त दुख जाए
1: नानक बोले सह

0: संग मचे।
1: छटना सो अस्थिर कर माने,
0: जो हो मन सो दूर बढ़ाने।
1: छोट जाए तिसका सम करे,
0: संग सबाए तिस पर हरे।
1: दले पतारे तोए,
0: गर्तर प्रीत पसंद संग होए।
1: अंधकूप में पतित विकराल,
0: नानक काल हो प्रभ दयाल।
1: पशु की मानस जात,
0: लोक प्रचार करे दिन रात।
1: पेख अंतर मल माया,
0: सबसे नहीं कष्ट करे

0: प्रसाद सती समर्थ खाहे
1: जिसका कर को रख मन वाहे
0: प्रसाद सुगन तन लाभ है
1: जिसको सुरत परम गत पावे
0: प्रसाद बसे सुख मंदर
1: जिसे ध्याए सदा मन अंदर
0: प्रसाद गृह संग सुख बचना
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना
0: प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ध्याए ध्यावन रोग
0: प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है प्रसाद सुख सेज सोहिजे
1: मन आठ पैर तांगा जस जावीजे
0: प्रसाद तो सबको माने
1: मुक्ता को जस रसन बखाने
0: प्रसाद तिला रहता धर्म
1: मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म
0: रम जी जपत धरगा मान पाव है
1: नानक पासे ती कर जावे
0: प्रसाद आरो कंचन देही
1: निवलावो तिस राम स्नेही
0: प्रसाद तेरा उल्ला रहत
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: तेरे सगल सिदर टाके
1: मन सरनी पर ठाकर प्रभु ताके
0: प्रसाद तुझको न पहुँचे
1: मन साल साल सिमरो प्रभु उच्चे
0: प्रसाद पायु दरहा बंदे हे
1: नानक ताकी भक्त करे
0: प्रसाद आपू खन पहरी जे
1: मन तिस सिमर को आलस की जे
0: प्रसाद अश्व अष्ट अश्वारी
1: मन तिस प्रभु को कभु ना बिसारी
0: प्रसाद बाख मिलख तना
1: राख क्रोए प्रभु अपने मना
0: दिन ते दीमन बंत बनाई
1: उठ तो बैठ सतसे त्याई
0: त्याए जो एक अलख है
1: ईहा हुआ नानक तेरी रखे
0: प्रसाद कहे पुन बहु दान
1: मन आठ पैर का तिसका ध्यान
0: प्रसाद तू आचार बिहारी
1: जिस प्रभु को सास सास चितारी
0: प्रसाद तेरा उल्लाह रहत
2: सुखे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: जे प्रसाद तेरे सरक जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभु सिमरो सदा अनूप
0: तेरी नीकी जात
1: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात
0: प्रसाद तेरी पत रहे
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे
0: प्रसाद तुन्हें कर्ण नाद
1: जे प्रसाद पेटे बिस्मार
0: प्रसाद भूले अमृत रसना
1: जे प्रसाद सुख सहजे बसना
0: जे प्रसाद हस्त कर चल है
1: जे प्रसाद संपूर्ण फल
0: जे प्रसाद परम गत पाव है
1: प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्राप त्याग अवर कत लग हो
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो
0: जे प्रसाद तू प्रकट संसार
1: जिस प्रभु को मूल न मनो विसार
0: प्रसाद तेरा प्रताप
1: रे मन मूर्त ताको जाप
0: प्रसाद तेरे कार्य पूरे
1: जिसे जान मन सदा हयुए
0: प्रसाद तू पावे है साच
1: रे मन मेरे तू कासे और राज
0: सब की गत हुए
1: नानक जाप जपे जप सोए
0: आप जपाए जपे सुनाओ
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ
0: प्रभ कृपा ते होए परगास
1: प्रभु दया ते कमल विगास
0: प्रसन्न बसे मन सोए
1: प्रभु दया ते मत उत्तम होए
0: हर मन दान प्रभ तेरी मिया
1: आप

0: नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी
1: नानक साध के

0: मिथ्या नाही रसना परस
1: मन में प्रीत रंजन दर्श
0: करत्र रूप न पेखे नेत्र
1: साधि टैल सब संग हेत
0: करन न सुनै साहू की निंदा
1: सबते जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद भिख्या पर हरे
1: मन की वासना मन ते डरे
0: इंद्री जित पंच दोख ते रहत
1: नानक कोट बंदे को ऐसा परस
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सुपर सन
1: विषम की माया ते होए पेन
0: कर्म कर्तव्य वे न कर्म
1: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहू फल की इच्छा नि बाछ है
1: केवल भक्त कीर्तन संग राच है
0: मन तन अंतर स्मरण गोपाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ है अवरह नाम जपावे
1: नानक को वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग

0: पाया धर्म
1: जिसके
0: मन पार ब्रह्म का निवास
1: नाम राम दास।
0: आत्म राम तिस्नद्री आया
1: दास पाया।
0: सदा निकट निकट हर जान
1: सो दास
0: अपने दास को अब कृपा करे
1: दास को सब सो जी पर
0: सगल संग आत्म पर उदास
1: ऐसी युक्त नानक राम दास।
0: प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे
1: जीवन मुक्त सोग पावे
0: तैसा हर्ष तैसा उस सोग
1: सदा नंद तै नहीं वियोग
0: तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी
1: तैसा अमृत तैसी भिक्खटी
0: तैसा मान तैसा अभिमान
1: तैसा रंग तैसा रजान
0: जो वरताए साई जुगत
1: नानक को पुरख करिए जीवन मुक्त
0: पार ब्रह्म के सगले ठाव
1: जित जित का राखे तैसा तिन नाव
0: आपे कर्ण करावन जोग
1: प्रभावे सोई फन होग
0: पसरियो आप होए अनंत रंग।

0: दुखन आर्जा कटे
1: संत के दुखन जानते नहीं सुखे
0: दुखन सुख सब जाए
1: संत के दुखन नरक में पाए
0: संत के दुखन मत होए मलीन
1: संत के दुखन सो बातें ही
0: संत हृदय को रखे ना कोए
1: संत के दुखन तान प्रष्ट होए
0: कृपाल कृपा जे करे
1: नानक संत संग निंदक ली तरे
0: संत के दुखन ते मुख पवे
1: संत के दुखन काज जो रवे
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
1: संत के दुखन त्रिक जोन कर माए
0: संत के दुखन तृष्णा में जल है
1: संत के दुखन सब को शरे
0: संत के दुखन तेज सब जाए
1: संत के दुखन नीच निचाए
0: दुखी का थाव को नाहे
1: नानक संत पावे ता विगत पाए
0: संत का नंदक महा अतताई
1: संत का निंदक हिंटी कर न पाई
0: संत का नंदक महा हथियारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का नंदक राज ते हीन
1: संत का निंदक दुखियार दीन
0: संत के नंदको सर्व रोग
1: संत के निंदको सदा विजोग
0: संत की निंदा दुख में दुख
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए भोग
0: संत का दुखी सदा अपवित्त
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित
0: संत के दुखी को ढांग लाग गए
1: संत के दुखी को सब त्याग गए
0: संत का दुखी महाहंकारी
1: संत का दुखी सदा भिखारी
0: संत का दुखी जन्म है मर है
1: संत की दुख ना सुख ते डरे
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ
1: नानक संत पावे ता लय मिलाए
0: संत का दुखी अज बीते टूटे
1: संत का दुखी किस काल ना पहुंचे
0: दुखी का उद्यान परमाई है
1: संत का दुखी उजड़ पाइए
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: जो सांस बिना मृत की लोथा
0: संत के दुखी की जड़ कश नाहे
1: आपन बीजा पे ही खाए
0: संत के दुखी को अवर न राखन हार
1: नानक संत पावे ता रहे अवार
0: संत का दुखी ओंबेल लाए
1: जो जल बिनु मछली तड़पाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राज
1: जो पाप की इंदर नहीं त्रापे
0: संत का दुखी छुटे अकेला
1: जो बुआर तिनके काहे दुहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सद मिथ्या कहत
0: संत का दुखी सदा
2: विख्यात निंदक का तुरही पया
1: नानक ज्योति सपावे सोई थिया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
1: संत के दुखी को दरगे मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाइए
1: संत का दुखी ना मरे ना जवाइए
0: संत के दुखी की पुजे ना आसा
1: संत का दुखी उचले निराशा
0: दुख ना तरसते कोई
1: जैसा पावे तैसा कोई होए
0: मेटे कोए
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब कट तिसके ओ करने हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: तद करो दिन रात
1: तिसे त्यावो सास ग्रास
0: बातें तिसका किया
1: जैसा करे तैसा को किया
0: अपना खेल आप करने हार
1: दूसरा

0: सुखमान
1: दुला काहे तेरे अजान
0: कौन बसताई तेरा संग
1: ना करियो रस रोगी पतंग
0: राम नाम जप हृदय माहे
1: नानक पासे दी कर जाए
0: जिस वखर को लैन

0: कहे सब कोई,
1: मुकुल जल हर दरगह सोए,
0: इहो व्यापार बिरला व्यापार है,
1: नानक ताके सत बलिहारे,
0: चरण साध के तोए तोए पियो,
1: हर प्रसाद को अपना जियो,
0: साध की दूर करो स्नान,
1: साध उपर जाइए गरमान,
0: साध सेवा बड़ पागी पाइये,
1: साध संग हर कीर्तन गाइये,
0: एक बिगंते साधु राखे,
1: हर गुण गाये अमृत रस चाखे,
0: उठ गई संत दराया,
1: सर्व सुख नानक ते पाया,
0: को जी वालन

0: सदा दिन रहनी
1: सबते ऊच निर्मल एक करनी
0: कर कृपा जिसको नाम दिया
1: नानक सोजन निर्मल किया
0: जाके मन गुर की प्रतीत
1: जिसन आवे हर प्रचीत
0: भक्त सुनिए तहलोए
1: जाके हृदय को होए
0: सच करनी सच ताकी रह

0: नो विस्तार
1: नाना
0: चलत करे खिन माहे
1: नाना
0: विधकर बंत बनाए
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: सब कर तिसके सब तिसके ठाओ
1: नानक हर नाओ
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
0: नाम के तारे सिमृत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुमन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आगास पाताल
1: नाम के तारे सगला काल
0: नाम के तारे पूरी सब पवन
1: नाम के संग उदरे सुन श्रवण
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सुजन करवाए
0: रूप सत जाका सत स्थान
1: पुरख सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत जाके बानी
1: सत पुरख सा माहे समाणी
0: सत कर्म जाके रचना सत
1: मूल सत सत उत्पात
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: जिसे बजाए तिसे सब फली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाय
1: विश्वास सत नानक गुरु ते पाई
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत्य जन जागे हृदय प्रवेश
0: सत नृत्य बुझे जे कोए
1: नाम जप ता की कत होए
0: आप सत की या सब सत
1: आपे जाने अपनी मृत रात
0: जिसकी सृष्टि सुकरने हार
1: भवन भूत कर्त विचार
0: करते की मित न जाने किया
1: नानक जो सो
0: विस्मन विस्म भय विस्माद।

0: प्रभ हो दे आल
1: सेव कीनो सदा निहाल
0: काट मुक्त जन प्या
1: जन्म मरण दुख पर गया
0: पुन्नी श्रद्धा सब पूरी
1: रब रिया सत्संग हजूरी
0: इसका सातन नियम लाए
1: नानक भक्ति नाम समाए
0: विसरे जे काल न पन है
1: सो को विसरे जे किया जाने
0: को विसरे जिन सब किश दिया
1: सो को विसरे जे जीवन जिया
0: सो को विसरे जे अगन में रखे
1: गुर प्रसाद को बेला लाके
0: सो क्यों विसरे जे बैखते काटे
1: जन्म जन्म का टूटा गांडे
0: पूरे तत है बजाया
1: प्रभु अपना नानक जन के आया
0: जन संत करो एहो काम
1: आन त्याग जगो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
1: आप जपो अपना नाम जपावो
0: भक्त पाए धरिए संसार
1: निर भक्ति तन हो शिशार
0: कल्याण सुख नित निद नाम
1: मूढ़त जात पाए विश्राम
0: भूखा होवत नाश
1: नानक नाम जपो गुरदास
0: प्रीत प्रेम रस जाओ
1: मन तन अंतर ही सुहाओ
0: नेत्र पेग दर्श सुख होए
1: मन विकसे सात चरण धोए
0: भक्त जना के मन तन रंग
1: बेला को पावे संग
0: बस दीजे कर मिया
1: गुर प्रसाद नाम जप लिया
0: माँ कही न जाए
1: नानक लिया सर्व समाए
0: सब बख्शंद दीन दयाल
1: भक्त बशन सदा कृपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व कटा करत कृतपाल
0: पुरख कारण करतार
1: भक्त जना के प्राण दार
0: जपे सो होए पनीत
1: भक्त पाए लावे मनीत
0: किन्हें आर नीच अजान
1: नानक तुम्हारी सर्व पुरख गुणार
0: कंठ मुक्त मोख पाए
1: एक निमक हर के गुण गाए
0: राज भोग बने आए
1: हर के नाम की कथा मन पाई
0: भोजन का पर संगीत
1: रसना जपती हर हर नीत
0: सुकरनी सुबह तनवंत
1: फिर

0: अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर अनूप
0: सेवा सेवक परवान
1: अंतर्यामी पर प्रधान
0: इस मन बसे सुहोत निहार।

0: सगल सामग्री एक कस्काटम आहे मौनिद अमृत प्रभ का नाम
1: देही मैं इसका विश्राम
0: सुन समाधान हत्ता है नाद
1: न जाइए जज विश्वास
0: दिन देखे जिस आप दिखाए।

0: कहीं न जाए,
1: दूसरा होए तो सो जी पाए,
0: इसका किया सब परवान,
1: और प्रसार नानक जो जान,
0: जो जाने से सदा सुख होए,
1: आम भलाए लय प्राप्त होए,
0: ओ तनवंत कुलवंत पदवंत,
1: जीवन मुक्त जिसे

कहु नानक सब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी। प्रभु पास जन की अरदास तू सच्चा साईं तू रखवाला सदा सदा हो तुध त्याई। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है हुई सहाए। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधा वै ताहे सब थाई हुए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां संग निभाई तिना शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चितावन काल सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। खालसे जी के बोलबाले बोलो जी। सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत पत दे राखे आप अकाल पुरख हे अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। गुरद्वारा श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तान न्योटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरा धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जीआं दे पावन चरणां च अरदास बेनती है। आप जी ने अपार बख्शिश कृपा रहमत कीती है अपने दर घर दियां समूह सिख संगतां सेवादार बीबियां नूं सतगुरु जी आप जी ने उद्यम बख्शिश कीते हन। आप जी दे बख्शे हुए उद्यम अते प्रेरणा दा सदका संगती रूप दे विच आप जी दी पावन हजूरी अंदर सतगुरु जी हाजिर हो करके सारिआं ने संगती रूप दे विच पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ कीते हन। सतगुरु आप जी दा कोटान कोट धन्नवाद है शुक्र है आप जीआं ने सेवा लई है कृपा करनी इसे तरह प्रेरणा बख्शिश करके सतगुरु जी उद्यम बख्शिश करते हुए अपने दर घर दियां सेवावां बख्श के सब नूं निवाजना जी
ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਅਰੋਗਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਏ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਦਾਤ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ

जय शरण बोले सोनिहाल सत श्री अकाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।